0: ये कौन सा? इधर है, उधर है, चार जगह स्टेशन के लिए।
1: फास्ट स्लो
0: कौन सा भी चलेगा?
1: हाँ ये वाला 5 नंबर, नीचे नीचे लेफ्ट वाला।